देहु सज्जन आशीषरिया जो हो वै साहिब सो मेल कर कर एहो पाहुचार सदले नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक